हमरे मन तनु राम को नामा। राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई बारह जो जन शत्र चले था, देही गिरज न खाई सर्ब सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। दस बैर अग्न

तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो आतरंग रूढ़ो मेरो रामैया रहाओ। जो धरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पावरला जो कोकल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया। बारक कौ जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया। साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले का हूं डिठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नाम में मन बीठला।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कोल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा।

रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै। मदन मूर्त पैतार गोबिंदे, सैन पणै पज परमानंदे पीपा।

जो ब्राह्मण दे सोई पिंड जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लिखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरै रत नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञान ही न ज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधले को गुरे अंचल दीजै जन नानक चले मिलंथा। जय श्री महला चौथा हीरा लाला मोल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक।

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम्या देरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया माया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानके अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जान हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राण्या कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे है चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन ना के है जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लय लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसे हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जैत सरी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन को तायो
रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लियो पत मेरी, जम को त्रास पयो उरे।

नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा। राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हों तिस आगे मन डेहिया। नानक कहे सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा फिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा। यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया। वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ। नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद पूलिया। मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूलिया। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारो काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ। नानकी बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ कां पह जाइय। आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदिया पाई है। तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मन तां को त्याई है सब जा कै हाथ। राम नाम तां संची है नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोय। थान अंतरे आप जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी। गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी। पज सरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोय। बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ। ਸ਼ੰਤ ਆਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ, ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ, ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ, ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ, ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜੋਬਨ ਗਇਆ ਬਤੀਤ, ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ, ਕਰ ਕੰਪੈ ਸਿਰ ਡੋਲ।

श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल शरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासनं मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जले मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेस प्रभ सिमर नानक ने दूर नै हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय ने हो सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नाश होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ
जन मरण पै कटी है।

रचनाया पारं मन बिलास वादं रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृमै मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह सो साईं जय विसरै नानक सो तन खेह पौड़ी सुंदर से जानेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतन आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सह त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिन्ना मित्र नाठ धन रूपहीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मर पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राजरस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसनं अर चंत मूड़ अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण पै नाकाम मोहया माया क्या विचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जगते पृथ्वी नव खंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण कौत कोट तमासया चेतना आवसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरै सैतानिया सलोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चालते पेखंदड़ो की भुल तुम्मा जिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुल लई माया पौड़ी चल दया नाल ना चलै सो क्यों संजीऐ तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजीऐ हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजीऐ प्रभु छोड़ अन लागै नरक समंजीऐ हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजीऐ सलोक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कछु ना लागई भगतन कौ मीठा यान सुआ सब फीकिया कर निरनौ डीठा अज्ञान परम दुख कटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंगम जीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादं अलबंधन कुसुम बसन चरण कमलर चंत संत नानक आन ना रुचते मुखडे गाऊ पलक छड़िया ना डेऊ चित जीवन संगम तिस धणी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यों मछली बिन

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थीवै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदोत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर

दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जा प्रभ पय दयाल।

चरण पखार करो गुर सेवा, मन चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुरे आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़या लेखा छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरबाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निद गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटे, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण।

भजन कर स्वामी ठाकन कौ एक हरे रहाओ। अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे। जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहां ही है तरे। जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ। काढ़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। ताको बिगड़ न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप। तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नियाप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप। हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेरवाना दया तारी हरनाथ। नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परयो दरबारे। कोट पराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे। साध संग परम गत पाई है माया रच बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे। नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचियो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध

बंधन तोर शोर बिख्या ते गुर को शब्द मेरा हीरे दीन रूप अनुरूप मेरो कश ना बिचार्यो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन पेख्यो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हर खे पतीन तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे देखन कौ दर्शन प्रवनीत बाट घाट तोसा संग मोरे मन अपने कौ मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत।

गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुरदार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजक सजाए वली नियामत बिरादरां दरबार मिलक खान आए जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बेदाए हवाल मालूम कर दंग पाक अलाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा तिलंग कर दूजा महला पंजवा तुद बिन दूजा नाही कोए तू करतार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक सभी ऊपर।

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेश तू मने दरियाओ तू देहंद तू बिसियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो। दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपट जित सत सरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हौ।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बंध आ सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै, जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै, ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला। रहाओ साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरियां दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाउ देवे दिखिया, चल सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जां को महला हजूर दूजे नवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगे पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाउ आप वरताए सी, चलिया पत स्यों जन्म सवार। वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवै जोगवै, भोगी होवै खाए। तपिया होवै तप करे, तीर्थ मल मल नहाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए। रहाओ जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए। अगे पुछ ना होवई, जे सणनी सणे जाए। तैसो जैसा कांडिए, जैसी कार कमाए। जो दम चेतना आवई, सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए। जन नानक तिन को वंदन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या। जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचिय पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई। हर तन रतन जिवे हर माणक, हर तन नाल अमृत वे लैवत। हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वे लैवत का बीजिया। भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हालत पलत हर तन की, भगता को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी जमदूत, किसे का गवाया ना जाई। हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलत सागत। हर दरगह टोई ना पाई, इस हर तन का साहो हर आप है संतो। जिसनो दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई। जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सूही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै। सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णिया। जिसके हृदय वसिया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान। रहाओ सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सोने फल सब अगियान।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाऊ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा, तू करता सब किछे आपे जाणै,

तेरी वड़ियाई तू है जाना सब तुदनो नित त्याए जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै जन नानक सो थाए पाए सुही महला चौथा जिनकै अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सबरो गवाए ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया तिन पवित्र परम पद पाए।

ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी विचहो मैं कार कमाई जिन किए तसै न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरै वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवें बख्श रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरठ सब साजी कोई सेवा करो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करै से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक अंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सत नाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पति आरै कछु ना पाईऐ साच लगै ताह मैं जाइऐ जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ता आणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए सुही महला पंजवां तन सोहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सा सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करीजे जाना दूर प्रभ अबनासी रहया भरपूर।

प्रगटया सूर ज्योत उजियारा सेज विशाई सरद अपारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिर सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यों हियो मिलन प्रभताई खोजित चरियो देखो प्रे जाई सुनत सुंदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीर निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है अंत न लही है मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभाथ दे निस्तारे सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महला पावे कह तो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ पेख दिखावे सच ना कमावे कह तो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता मन ही प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझै ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनते आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्स करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सागत फिरता नीर बरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता गुनहगार लून हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवा लाल

साच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की तीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सरन नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल है खरना कूड़ै मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंद विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सूही महला पंजवा, गुर पूरे जपे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न सके तीने ताप, निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे। नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला। रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट ना तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पाज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। रहाओ करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सूही महला पंजवा, घर का काज ना जान।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई कर वासना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई किस दोष ना दी जय किरत पवाई। सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितए काज जितने त्रिपताए। नगन फिर तरंग एक कै ओहो सोबा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवा हर का संत प्राण तानु तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगलते जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रबेंती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया। न मरिया न जरिया कीर्तन जुरिया बहुविद फिरिया पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा तौ मैं आया सरनी आया भरोसे आया कृपा आया। ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया पावक सगराया गही ओट साधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹਲ

आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटै कतहूं काची देह आणी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर दान हर

तेरी बख्श ना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहरे आराधै तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।

कर कृपा अपना नाम दीजै नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ। सहज सिंगार कामन कर आवै ता सुहागण जा कंते पावै। ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतराई कर कृपा प्रभ लावो पाई। खरी सियाणी कंत ना पाणी माया लागी परम पुलाणी। हौ मैं जाई ता कंत समाई तौ कामण प्यारे नम निद पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गैले हो प्रीतम प्रभराया। भणत ना

चिट्टे जिन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तिन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता।

सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होनिया गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर त्या सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारिया सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल न तुमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे।

छोट ना जाई, जे तुद वल रहै ता कोई, किहो आखो तुद विसरिया मर जाई। वार वार जाई गुरी उपर, पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तौ दर्शन कह ताई। चखड़ चांगी मीहो वरसै, पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवै बहु खारा, गुर सिख लंघ गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवका होए सेवक वरता, कर कर बिन बुलाई। नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे, गुर विच दे तुझै ते आई। जे तुद सेवै, जो तुद सेवै, सो तू है होवै, तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई। जिस तू देहे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागै, जे बक्से ता गुर वडियाई। गुरमुख बोलै सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण आराधी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गोसाई। राग सुही महला चौथा, अष्टपदियां कर दसवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने। मन मन होए निहाल, जगत देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाहो, गुर पूरे ते पाया। अमृत अगम अथाहो रहाओ, हाँ सतगुर वेख विकसिया। हर नाम में लगा प्यार, किरपा करके मेलियां नो पाया मोख द्वार। सतगुर बिरही नाम का, जे मिलै ता तन मन देओ। जे पूर्व होवै लिखिया, ता अमृत सहज पियो। सुतियां गुर सा लाही है, उठदियां पी गुर आलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै, हाँ ताके तोवा पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो, जो प्रीतम दे मिलाए। सतगुर मिलिया हर पाया, मिलिया सह सुभाए। सतगुर सागर गुण नाम का, तिस देखण का चाओ। हाँ तिस जीव बिन देखे मर जाओ। ज्यो मछली बिन पानी है, रहे न कित पाए। त्यों हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामे मर जाए। मैं सतगुर सेती परहड़ी, क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। हर हर नाम रतन है, गुर तुठा देवे माए। मैं तर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की, को प्रीत में आखे आए। तिस देवा मन अपना, निम निम लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू, करता पुरख सुजान। सतगुर मीत मिलाया, मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। ओह अबनासी पुरख है, समय रहा सुमाए। राम नाम तन संचया, साबत पूंजी रास।
ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸ। ਅਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ਮਨੈ ਵਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਿਰੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਾਉ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੇ ਅਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਪੇ ਬਸੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਸੂਝੈ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰੇ ਕਿਵਾਰਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪੁਰਾਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਕੈ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨਾ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਗਤ ਨਾ ਮੋਰੀ ਏਸ ਏਕ ਆਸ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦਰ ਹਰ ਨਾਗਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ਨਰਾਇਣ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਉ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਨ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ ਰਮਣ ਗੁਣਾ ਕਟੀਐ ਜਮਜਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ ਸਰਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा। नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्वगुणा परपूरे। अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुर बाणा। ऐसा गुरवट भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल वखे उतर हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहुड़ जोड़ ना आई है। गुरचरणी लागे परम पौ भागे मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै। नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया या मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिया मेरा सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वह जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए। सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई। कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी। नेत्र देखे दर्स तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई। जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा। नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम। कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहित आना। काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अविनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम। पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे। महा बिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग। कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला। सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला।
ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਨ ਜਾਗਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਲਾਗਾ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵੈ ਰਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ ਕਥੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कट कट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबहू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर रावण जाए पिर छोड़िया करे अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उरतार आग्याकारी सदा सुहागण आ मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचाए उन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियान सच्ची धर्मशाला आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आवरदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुरे अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नहीं था ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एन सलागे पाओ नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसम महे समाए महला तीजा लोका वेहो सुहवी सुहा वेस करी वेसी सहना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी ज्योतिष पावै सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लख्या पारा

जिस तू मिले सो तुद मिले, सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूहवीए सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, जो टिके ना बिरख की शाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत ना पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पै पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ, सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया, ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जानै, ताजा मान सुख रलिया मन है, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देखना सुनै अपाखै, सो कत जानै पीर पराई, जाकै अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबर आवै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो, तै सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तै साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछ पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तै सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी, सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिने अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब सरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण, ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचक तुम लाखा पेओ, रहाओ माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसै वे जात ना होए, एके कहो नाही पौ कोए करता करे करा वैसोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचै तारिया, अवरना सूजै गुर कौ वारिया नानक नाम रति निस्तारिया, बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहि ध्याने, हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै खिन सतगुर बूझ बुझाई, रहाओ मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली, सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यो जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दा

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख बखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कही है। मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाणे से।

आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप आप जाए आपे जापे, आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेव को सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है, समय एक समाना, सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंधन लागे सही ध्याना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अवमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना, आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तवे कोई चाले, जो हर पावे भगवाना, कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, एक ना करमे दे वड़ियाई, एक परम पवे अभमाना, बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरा, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को तरो गुमाना, सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिसे अंतर रवे हर नामा रहाओ, चहो जुगा का हुन निबेड़ा, नर्म नुखानो एक निधाना, जात संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा, जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना, कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए, चूके मने अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे, मानत पाहे निधाना, बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावे आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए, हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ, सदा रंग राते तेरे चाए, हर जो आव वसै मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए, गुरमुख राते शब्द रंगाए, निकर वासा हर गुण गाए, रंग चलू लै हरस पाए, एहो रंग कदे न उतरै साज समाए, अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तन बौन ना फेरा, नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा, बिलावल महला तीजा, पूरे गुरते वड्याई पाई, अचिंत नाम वस्या मन आई, हाँ मैं माया शब्द जलाई, दर साचै गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै, बहु न मरे न जंपे खै, कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभमान, सद ही लागा सही ध्यान, अंधन गावे एको नाम, इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जै देखा तरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुरपूरा पाया, अंतर नाम निदान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया, राग बिलावल महला चौथा, कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय

माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना। ज्यों प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना। ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो पर्यो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो, हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरख्या जन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो, हम पाथरहीन अकर्मा। मेरे मन भज राम ना मैं रामा, गुरमत हर रस पाईए। होर त्यागो ने फल कामा रहाओ, हर जन सेवक से हर तारे। हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर। हर जपिए वड्डे करमा, नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा। ओए फिर जोन पवाई है, मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वडकर्मा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुभत मोहे बिखिया, बहु दुर्बत मैल परा। तुमरी सेवा करना सके प्रभ, हम क्यों कर मुग्ध तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी। मेरे सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी, हर देहो मती जस करा। तुमरा संग लगे से उधरे, ज्यो संग काष्ट लोह तरा। सागत नर होची मत मध्यम, जिन हर हर सेव ना करा। ते नर भागहीन दोहचारी, ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुरसरा। दुर्मत मैल गई हर भजया, जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोथ है कल युग, खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत रखे गुण गाए। मिल संगत पार परो रहाओ, काया नगर में राम रसी उत्तम। क्यों पाई अब दे जन करो, सतगुर सेव सफल हर दर्शन। मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा। हर संतो चाख दिखाओ, गुरमत हर रस मीठा लागा। तिन बिसरे सब बिखरसो, राम नाम रस राम रसायण। हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो, बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो, नित सेवो दिन सो सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ, अन क्यो पाव चितविय बहु तेरे। सा होवै जे बात हो वैनी, अपना पला सब कोई बंश है। सो करे जे मेरा चितना चितैनी, मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत समत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानके प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावे तवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अंद मूल त्यायो पुरखोत्म, अन दिन अंध आनंदे। धर्मराय की कान चुकाई, सब चूके जमके छंदे। जप मानो हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया। गुण गाए परमानंदे रहाओ, साकत मूड़ माया के बद्धक। विच माया फिर फिरंदे, तृष्णा जलत किरत के बांधे। ज्यो तेली बल्द पवंदे, गुरमुख सेव लगे से उधरे। वड पागी सेव करंदे, जिन हर जपया तिन फल पाया। सब टूटे माया फंदे, आपे ठाकुर आपे सेवको। सब आपे आप गोविंदे, जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवां चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुरु बोहित

हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिर उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नजरी आया, जन नानक हर गुण अक्ष माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्र मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जंपीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा। पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर ज प्रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिय, साधु तूर मिले निस्तरिय। बिलावल महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए प्रसीना। बिलावल महला।

सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दातार मनते कवो न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जा कहो कृपा करहो प्रभु ता कहो लाभो सेव निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरै परमानंद बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन तन मन सब शीतल पया पाया सुखबीर रहाओ सोवत हर जप जागया पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ता का अचरज स्वाद आप मुक्त संगीतरे कोल कुटां ब्योदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीबान परवार तन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए कथा पुरातन इयो सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे बिलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल राओ आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखै त्यो रहा प्रभ अगम अपारे करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा रहाओ जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार।

मुखे अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब कह मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत घना, सुख सहज विश्राम, मन ते कदे न विसरे अनाथ को नाथ। नानक प्रभ शरणागति जाकै सब किश हाथ, बिलावल महला पंजवां, जिन तू बंद कर छोड़िया फुर सुख मैं पाया। सदा सिमर चरनार बिंद शीतल होताया, जीवतया अथवा मोया किश काम न आवै, जिन एहो रचन रचाया को ते स्यो रंग लावै। रहाओ अरे प्राणी उसन सीत करता करै, काम ते काढ़ कीरी ते अस्ती करै, टूटा ले गंड है अंडज जेरज सेतज उत्पुजा, प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर फल, रविय हर निरत। हम ते कशु ना होवना सरन प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल महला पंजवां, खोजित खोजित मैं फेरा खोजो बन थान, अशल अशे दा भेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन ते सुपना पला बसिए प्रभ संग। रहाओ वर्ण आश्रम शास्त्र सुनाओ, दर्शन की प्यास, रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकर अविनाश। ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर, कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा, नानक तिस प्रपेटिया जाके पूर्ण करमा। बिलावल महला पंजवा, जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप, कर जो तारिया सतगुरु कर हर आप। खात खर्चत निबहत रह गुरसब दया खूट, पूर्ण पई समगरी कबहू नहीं टूट। रहाओ साध संग आराधना हर निद्या पार, धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार। भगत आराध्या एक रंग गोबिंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्य पै रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ

प्रव्यग्मे अपार वस्त कमावत सब सुखी किशु न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर हरा दिया होइए आरोग रामचंद की लष्ट का जनमार आरोग रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग साध संगत कह वारण मिलया संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वह साध जान सो लेता मान रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज रामदास पुर कीने गुरदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई किश बिघन ना लागे नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिय मिल साध समागे उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम पागे राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै तंत मंत न जो है तित ताख न लागै रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किछ नहीं करना।

हाथ और आओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नान कृपा भई प्रभ भय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा का वड प्रताप। दोखा मारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दुपदे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अब मान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत।

राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुलिया नूपा रहाओ। बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन ना जाए वड्याई मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बखैठ गौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवारो पावक तलै जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी जोफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवाओ जैसे पांत बोली रहाओ। सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पिटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तै रया समाई रहाओ जय महाभयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतत पवित एक निमख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है कौ सुरजन के जुगति त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपुर मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे

बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कौ तुही पछाना, जो जी अन मैं होता, अरे मन काय कहां लौ डह कह, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पय मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, ज्यो कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितव नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका राखाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूब मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय अनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रखे अपने को, काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ।

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकी शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिये नित सरणी, गुर ते पाइये हो निदान, जन मरण की कटिये फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक तां की सरनाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मूल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर ताके, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी, तुही वसै साध कै संगा। रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीट ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरे हीए मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्स प्रमांगै, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास है। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड भाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। रहाओ काढ़ कुठार खसम सिर काटिया, खिन मैं होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया दंदी ना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल

एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जम दर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जम काल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप बहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रेका नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे ग्रेब बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोहया नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यो रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनि उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै, कुटल गांठ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितए कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ता आगे अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए। अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार के कुटुंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने स्वय मिलासा। जे

रहाओ जिन किए रंग अंक प्रकार, उपत परलो निमख मझार, जा की गत मत कही ना जाए। सो प्रभ मन मेरे सदा ते आए, आए न जावे निश्चल तनी, बेअंत गुणा ता के गनी। लाल नाम जाके परे भंडार, सगल घटा देवे आधार। सत पुरख जा को है नाओ, मिटै कोट अग्निमुख जस गाओ। बाल सिखाई

ओट, नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हरे को नाम, मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार में भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाईए पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे सो प्रमाण, रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर से ओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दे ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईए वड भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटे कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिव लाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति बैसनो रामदास मित नाही।

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड

पाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कहे तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राख राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन्ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है, साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल, है पी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला, ना हो बिनसे ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए, ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं है समाया, एह परंपर होता आया, पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया, अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरणवण पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए, सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तहूर। राग गौ

वारै अपने कर्म की गत मैं क्या जाना मैं क्या जाना बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा परखोतम कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो कर मैं किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे, राग गोंड

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जा रो तिसे जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै, रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताजे ओहेरी, कहे कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार, रहाओ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिये पर चै साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजार है सो दे, पांच पलीते कहो प्रबोद, नौ नायक की भक्त पछान, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात ना करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अतरूप बिचखन गोंड। धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन वे संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध, रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे का संग निकावन अन्न।

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डारते हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जपद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक रमैया लै हो आन देव बदला वंदै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू टमकावै महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै तू कहत ही अद भवानी मूत की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशानं, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार।

अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावे जे हो द्वादश शिला पूजावे जे हो कूप तटा देवावे करै निंद सब बिरथा जावे साध का निंदक कैसे

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली लागै तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर आ भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रहै,

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द।

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन को आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइया एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित सह तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने ऐसा।

सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मित आपे जाने हरे आपे पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आ गाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की शरणाई। राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है एह जग लूटिया ते बैरी लै बादे सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता श्री उपर रखवारा बेप्रवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण होए मिले सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ न कत हूं जाता वर्ण

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन है मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एह तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नै बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बिचार। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवारो रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक है सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक है मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया।

जप नाथ दिन रहन आई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा ना

राज रंग रूप सब कूर, नाम बिना होए जासी तूर। भरम भूले बाद अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी। सोग हरख मैं देह बरदानी, सागत इवही करत बयानी। हर का नाम अमृत कल माहे, एहो निदाना साधु पाए। नानक गुर गोविंद जिस तूठा, घट घट रमैया तिन ही डीठा। राम कली महला पंजवा, पंच शब्द तह पूर्ण नाद। अनहद बाजे अचरज बिस्माद, तेल करे संत हर लोग। पार ब्रह्म पूर्ण रजोग, सुख सहज आनंद पवन। साध संग बैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ। ऊहा सिमरै केवल नाम, बिरले पावे ओ विश्राम। भोजन पाओ कीर्तन आधार, निश्चल आसन बेसुमार। दिग ना डोले कतहू ना तावे, गुर प्रसाद को।

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन संतन कै बलिहारी जां की ओट गही सुख पाया।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत

आप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड़ियाई कीमत कहन न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहे समा तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सुख या नंद या रोग समदर्शी।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु ना लह। इसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा, कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेड़ न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास हे बित, काटी बंध हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे। हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

सदा आनंद न होवी सोग, कबु न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै न तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरी।

आए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मनते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर रामकली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिन

पाव मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवां, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कष्ट उट न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी

अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केलो, आप बिछोरा आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप, रामकली महला पंजवा, किशु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनामे तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधे प्रभ गुणपास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान, रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधे जंत, मिलिए प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, कट कट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार, सुमत सार।

नाम जपत परम सुख पाई आवा गौण मिटै मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मैं होए निवास संत संगत मैं होए उधार नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जब सदा सुहेले सगल बिना से रोग कूरा रहाओ। एक रादो साचा सोए जाकी सरण सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मिटाई आठ पहर प्रभ का जप जाप नानक राखा हो आप। राग राम कली महला पंजवा पड़ताल करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं जलन थलन बस गगन।

दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन भीजै रहाओ। मन माया मैं उर्ज रहो है, बुझे न कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जा कै सिमरै, पावै पंडरबाना। पय दयाल कृपाल संत जानो, तब ए बात बताई, सर्व धर्म मानो ते किए, जे प्रभ कीर्त गाई। राम नाम नर निस्बासर मैं, निमक

मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्थाए ना पाई शब्द मरै मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई बिन नामै होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई गुरमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करै पर विद नहीं जाणै दूजै पाए मल लाई गुरमुख होवै सो पूजा जाणै पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावै संतो अंते नाम सखाई अपना आपना पछाणै संतो कूड़ करै वड्याई पाखंड कीनै जम नहीं छोड़ै लै जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणै गत मित तिन्ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणै सतसंगत मिलाई गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै शोभा पाई साची बाणी सच वखाणै सच नाम लिव लाई पह भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करै फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक आंदन भगत करै दिन राती राम नाम उर तारी आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावां शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावै बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवा

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कह न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम भुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बणत बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परवृत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। हरहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी त्रिपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाच लाए तराई। अपने जीतें आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दी पाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप्त आगाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो। आद जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उधरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत का

राम कली सद एको ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरों।

पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलख भंडार नाम अनंत तरा। नाम नर हर निधान जिनके, रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास्त आयना। किल विखहरना नाम पुने चरना, नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोय न जान नहीं, देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं। जी जंत सब तो इतिहावै पुरख पत परमेसरा, सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीसरा। साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी मान नहीं, बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जलने बुझाई सांत आई मिले चिरी विशुन्या। आनंद हरख सहि साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया। राम कली महला पंजवा, रुण चुनो शब्दा नाहद नित उठ गाइय संतन कै। केलविक सब दुख बिनासनो हर नाम जपिय गुरमंतन कै। हर नाम लीजै अम्यो पीजै रहन दिन सहारा दिया। जोग दाना नेक किरिया लग चरण कमल ऐसा दिया। पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याय स्वामी नर हरै। सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावै गुण तेरे राम। आनंद मंगल गुरचरणी लागे पाए सुख कनेरे राम। सुख निदान मिलिया दुख हरिया, कृपा कर प्रभ राखिया। हर चरण लागा प्रंपो पागा हर नाम रसना पाखिया। हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया। बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया। मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम। दयाल प्रभु दा मोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम। दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारणो। मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो। सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा। बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जब जीवा। राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरनी लाए राम। आठ पहरे अपना प्रभ सिमरै एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे अवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुनिया पूरी मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख विसूरिया। राम कली महला पंजवा, शंत सलोक चरण कमल सरणागति आनंद मंगल गुणगाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम। शंत प्रभ विपत निवारणो तिस बने अवर ना कोए जियो। सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मनो न विसरै। गुरचरण लागे दिन सुभागे सर्ब गुण जगदीसरै। कर सेव सेव को दिन सरैणी तिस पावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुखै दाते प्रगास मंतन होए जियो। सलोक हर सिमरत मंतन सुखी बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचित पुरख एको तिसै सिव रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने सदा यंदन जागा। जियो पिंड गृह थान तिसका तन जोमन तनमाल जियो। सद सदा बल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरे गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान। शंत
ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੋ ਅੰਚਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਿਆਲ ਦੇਵ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓਟ ਕੀ ਜੈ ਜੀਓ ਦੀ ਜੈ, ਆਸ ਇੱਕ ਧਰਨੀ ਧਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੇਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗ ਜੀਓ। ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾ ਸੋਹਾਗ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ

महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानके ओठ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराओ कब पेखां गोपाल है कोई साजन संत जानो नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने

ओंकार शब्द उधरे ओ ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर उतर पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप आजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिखाया गुररस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कहे सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण इउं कर महल सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम जो त्यो जाला तीन पवन मैं गुरु गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे ओ उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओहो विधाता मन तन दे ओहो विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसि जेहा अत निर्मायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिव लाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंग नहीं रहना।

ज्ञानो बोलै आपे बुझै, आपे समझै आपे सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पहावै। गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साचा खोट, गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो, नानक गुरमत साच समावो। टूटै ने हो के बोले सही, टूटै बांधू दिस गही, टूट प्रीत गई बुरबोल, दुरमत पर हर छाडी टोल। टूटै गंठ पड़ै विचार, गुरसबदी कर कार जसार, लाहा साच ना आवै तोटा, त्रिपवन ठाकर प्रीत मोटा। ठाको मनुआ रखो ठाए, ठहक मुई अवगन पछताए, ठाकर एक सुबह

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरिए तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाइए अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाइए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती सच है साजी तिसमें ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिय सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाण गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे।

नानक दरगह पावै मान। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, ता की कीमत करै ना कोए। जै देखा तै रया समाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कमन आधारो। बोले खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नम मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, एत उत एको जाणै। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत अंगल वाई अवदू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै लख अपारो। त्रै गुण मेटै शब्द वसाए, ता मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, ता हर नाम लगै प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहुते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथिया ले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवदू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवदू, हम मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित असर रहिया, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल ना ग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रहै, तौ नानक आत्म राम कौल है। गुर

आए, ना किश बीजे ना उगवै, जो बक्से सो खाए। अंबै सेती अंब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए। नानक गुरमुख चलत है, वेखो लोका आए। लोक के वेखै बपड़ा, जिसनो सोजी ना आए। जिस वेखा ले सो वेखै, जिस वसिया मन माहे। महला तीजा, मन मुख दुख का खेत है। दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जमै दुख मरे। होमै करत विहाए, आवन जान ना सुजई, अंधा अंध कुमाए। जो देवै तिसै ना जानई, दित्ते को लपटाए। नानक पूर्व लिखिया, कमावना अवरना करना जाए। महला तीजा, सतगुर मिले सदा सुख, जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो बिबेक है, अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटी है, ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया, जै देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया, बैसन को जाई। सब किश आपे आप है, गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजिया नु, कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने, पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप, गुर शब्द ते आई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई।

आन दिन गुण गावे सुख सहजे बिख पव जल नाम तरे नानक गुरमुख पाई है जा को नजर करे पौड़ी। दूजा पावर चाहे उन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय अन हुक्म कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा सब किस तेरा खेल है सत सिरजनहारा। जिस पावै तिस बख्श लै है सच शब्द समाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावे माया नो फिर तपा सदावे। परमे पूला सब तीर्थ गह ओहो तपा कैसे परम गत लह। गुरप्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा सो तपा जे हो तप काले सतगुर नो मिले शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमति कट चानना अनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वाण त्रिण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण। सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाह वाह सच्चे पात।

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है करमी पल्ले पाए नानक नौ निद पाई है जे चले तसैर जाए महला तीजा सहजे सदगुरना सेवयो विच होमै जन्म बिनास रसना हरसना चखियो कमला होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनास इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दसन दास ता अंदन सेवा करे सतगुरु की कबै न छोड़ै पास ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै तिव हर गुणतास पौड़ी छत्ती जोग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजियां नो आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियान पापुन गणत गणिनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतिनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्स मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला।

सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म न बूझै सच नानक हर का भाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी ओने अंतर लोभ विकार ओए अपने सवाए आए बह गल्ला करै ओना मारे जम जंदार अगै दरगै लेखा मंगे है।

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाही किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर पावै सो मन लैन से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानके आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमाव दे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लाया न मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात स्पीति। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेद ना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। तुर्क मंत्र कर

जोगी गिर ही जटा बिभूत, आगै पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई। नानक काल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान। महला पहला, हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पड़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसाए उथै को जाए। करनी बाजाओ पिस ना पाए, जोगी कह कर जुगत दसाई। तित कारण कर मुंद्रा पाई, मुंद्रा पाए फिर संसार। जिथै किथै सृजनहार, जेते जीते ते वाटाऊ। चीरी आई ढिल न काऊ, एथे जाणै सो जाए सियाणै। होर फकड़ हिंदू मुसलमान, सबना का दर लेखा होए। करनी बाजो तरे न कोए, सचो सच वखाण कोए। नानक अगै पुछ न होए, पौड़ी हर का मंदिर आखिया। काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेहरी, गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदिर शरीर अत सोहना, हर हर नाम दिड़। मन मुखे आप खोआयन, माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है, पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया। ना सत पानी जंत फिरै, ना सत मुंड मुंडाई केसी। ना सत पड़िया देश फिरै, ना सत रुखी बिरखी पत्थर। आपत शावै दुख सहै, ना सत हस्ती बदे संगल। ना सत गाई काओ चरै, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई। जिसनों देत से आए मिलै, नानक ताको मिलै वडाई। जिस कट पीतर शब्द रवै, सब कट मेरे हों सब ना अंदर। जिसै खुवाई तिस कौन कहै, जिसै दिखाला वाटड़ी तिसै भुलावै कौन। जिसै भुलाई पंध से।

अहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान। बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत। कन पड़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम कर रह ता नानक आखे गुर को कह। छे वरतारे वरत पूत ना संसारी ना अवधूत। निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता। मानस देह गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर्म है विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक मान है सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला। नानकिया खैरे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई। आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रो

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबै नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तेण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारै जाओ तिन की धूल हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै हाँ सदबल्या

उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितिया न सौपे जिस भंडार फिर पुछना लीतिया न जिसनो लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेनू जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एको मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कन्न समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जनतारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां।

व्यापिया दुर्मत कबुद्ध कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगै आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवां कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

माधाना पर्वत कर नेत्र बासर माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकालियोन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिनक्योन लहने तरयोन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्तां लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विना है मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौ निध नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़े दिसे मात लोक तो सुजे दूर फेर वसाया फेरे आन सतगुर खा डूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिउ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान चौद

68 तीर्थ गुरु दिखाए कठी पितर नाओगो, पंच सहाई जन की सोबा, पलो पलो ना कहावोगो, नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध समा।

पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तउ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जथ रथ राय नंद, राजा मेरा रामचंद, प्रणव नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै,

काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना तीन बसाए कठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोए तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी तह बाजे सबदया नाहद बाणी तह चांदना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत सीजै अमृत रस गगन अंतर भीजै एस कला जो जाने पे ओ पेटै तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र लै हृदय रह मनुआ उल्ट सुन महंगा है। जागत रह ना अलिया पाख पांचो इंद्री बस कर रख गुर की साखी राख चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म ना जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जरै सो निजर चरै जगन्नाथ्यो गोष्ठ करै चौ मुख दीवा जो द्वार पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी पंचे शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मन जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराधे, सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यों पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देह प्रभ जाचाओ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे, नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जपियो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कान कान कान हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन आरे पाथर भारे, हर तारे संग जनखे, जिनको तुम्हार रखो स्वामी।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे, तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर

गुण गावै स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परि जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकै हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवै तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुऐ बंदियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावै जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम गोचर स्वामी सब त्यावै हर रुणने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सरल उठे बो लहरी मिल सरल सरल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जाना हम न जाही हर गहने हम बारक कौर दुस्त धारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जल निधर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देवो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल दुपाई दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का गृहो रे आप सवारो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हरे आवते की खबर गुर पाई मन तनो आनंदो आनंद पहे हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पहे गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मेरे संत संगत सुभवंती सुने कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हौ कुरबानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिसको हौ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो निह कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद राम हाँ क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच जावै
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਵੈ ਕਵਨ ਯੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ਰੀਜਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਗੇ ਹੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜ ਮਹਾਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਹੀ ਦਿਸ਼ਟਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन धीरे। नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम तन पूंजी देवो सब तिशना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पगर संघारे पंचभूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पावो सतसंगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचे जब उन वै कहन कनहारे साकत कौ अमृत बहु सिंचौ सब डाल फूल बिस्कारे ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै पर उपकारे संत है संत मिलै मन बिकसै ज्यो जल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हल्क है हल्क्यो सब है बिगारे मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लै मारे राख राख राख प्रा मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सतगुर गुर

हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया रहाओ। काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ। वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता। पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता। ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मंत्रन राता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता। राम रसायन

कमल प्रगास भया गुर पाया, हर जप्यो प्रंपो भागा रहाओ। पै पाए भगत लागो मेरा ही आरा, मन सोयो गुरमत जागा। किल बिक खीन पए सांत आई, हर उर तारियो वड भागा। मन मुख रंग कुसुंभ है कचुआ, जो कुसुम चार दिन चागा। खिन मैं बिनस जाए परतापै, डंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध्यत गूड़ी, ज्यों रंग मजीठ बहु लागा। काया कापर चीर बहु फारे, हर रंग नल है सुपागा। हर चार्यो रंग मिले गुर सोभा,

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा। इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरे चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सोकियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा से ओ कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हौ बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक कहो प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवां दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत की न्यो पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ ले हो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तान्यो राम बेन बाजै मदर मदर तुन अनहत गाजै रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण उंडै कंबली तन तन तू माता देव की जह ग्रह रमैया कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेलै श्री नारायणा बिन बजावै गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गोतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी
ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਕਟ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖਿਆ ਅਨੰਤਾ, ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਧਾ ਪਰਮ ਭੂਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰ ਫੋੜੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਮਾਏ।

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

तौ दीवाना जानिया जा एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए तौ दीवाना जानिया जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मनुख फिर से जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देहे।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुआरी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसाल तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किश आपस ते जानिया ए ही सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री ता तो सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझे कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर्मा नया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पय सच्चे की सरना। मारू महला तीजा आवन जाना ना थी निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार। गुर कै शब्द ते आए तू ता सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। जोनी सब पवाईयन बिष्टा माए समाए। वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए। अंदर सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए। आपे सृष्ट सब साजिया नू आपे नजर करे। नानक नाम वड़ियाईया जय भावें तैं दे।

अपने चलता। जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो। हवन दिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो। मारू महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखियत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा। एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डर पै, केते रूपयो पाया। शल बपरी कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया। सगर समग्री डरै ब्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोहै दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रु बारक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे। मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण। परयो सरन द्वारे रहाओ, बालमीक सुपचारो तरयो। बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो। गतपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद। हर नाक्ष नखै बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता। सगले को लियो जारे, कवन पराध।

अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ। पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पए उदमाते, हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पए एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवां, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चिहन सुनि ऊपर शोहयो, मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत, चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी, बसदा खिमाने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा, इन मैं कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता, नाले हम मैं पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे, ओहा आवै जाई। वर्ण चिहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पणत नानक जब खेल उजारै, तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवां, मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ, नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो, तिस्ते मुख नहीं मोरेओ, सहजानंद रखियो गृह पीतर, उठ वाहू कौ दौरेओ। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जानेओ, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथै ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ, सवरे हलत पलाता, तन सेवक सफल ओह आया, जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवां, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिटकई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरण आई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैर आई, सद हजूर हाजर है नाजर, कत न पयो दूराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी, होए संत सहाई, पावन पतत किए खन पीतर, मैं मां कथन न जाई। निरपौ पय सगल पै खोए, गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावे ठाकर का, रहन दिन सिलिवलाई। मारू महला पंजवां, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ, ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ को क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया, तिस्यों जियरा जार सरे रहाओ। जाके ना

जिसका जास सुंत पवतरी है ता स्यो रंग न लाव सिरे। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सिरे। पयो प्रसाद कृपा निद ठाकर संत संग पत पाई। कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा जव प्र पय सहाई। मारू महला पंजवा अंतर जामी सब जान तिस्ते कहां दुलारे हो। हस्त पाव चरेखन पीतर अग्न संग लह जा रहे हो। मूड़े तय मंते राम बिसारे हो। लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बेदारे हो रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर टरत ना काहू टारे हो। प्रभ विसरत महा दुख पायो एहो नानक तत बिचारे हो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत। हर गुण गावे नीता नीत तिसबिन दूजा अवर ना को। वाद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार। नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करै अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू पूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करै अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कौ अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखै भोगै तबत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंघना पार ना परना जाए। काम क्रोध

कोट लाख सर्व को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जा को नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर्जन मैं गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवे तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाओ रूप रंग खुशिया मन भोगण ते शिद्र विकारा हर का नाम निदान कल्याणा सुख सहज ओ सारा माया रंग बिरंग खिन मैं जो बद्र की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते जिन गुरमिल हर हर गाया ऊच मूचा पार स्वामी अगम दरबारा नाम वड्याई सोभा नानक खसम प्यारा मारू महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार उत्पाती किया दिन सो सब राती वन त्रैण त्रिपवन पानी चार बेद चारे खानी खंड दीप सब लोवा एक वावे ते सब होवा करण हारा बूजो रे सतगुर मिले तांसू जै रे रहाओ त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा हों मैं आवै जाई मन टिकन न पावै राई वाजगुरु गोबारा मिल सतगुर निस्तारा हां हां कर्म कुमाने ते बंद गलाने मेरी मेरी तारी ओहा पैर लोहारी सो गुर मिल एक पछाण जिस होवे पाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नै आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंत ना पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाद सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया। मारू महला पंजवा कर छेवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सयाण पा मिलसा त्याग मान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कवो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जंतु किया प्रभ करण कारण एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन नाम

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुध आई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो।

ना जाना सियाणा सदा साहेब कह रंगे राता अंदन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किसी ही कस बक्से आपे दे ले पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

राजे गुण प्रगासं जति सति संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल पर कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन स्यों लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपव बाल सिखाई है। आपे सुरग मच पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। वेदक तेबी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे।

पारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रभ आपे परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अभुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया पदाता ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सह दाता तिल ना तुमाई भरपुर धार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमिया पार साचे सृजन हार मुरार जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिलै मेलाई है। ब्रह्मा विश्रम हेस द्वार है उबे सेवै लख्या पार है होर केती दर दिसै बिल लांदी मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी होर ना दिसै वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज ना जाना शोहर बिन पर नींद ना पाई है। अंतर अगन जलै पड़क हारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे ज्ञान खड़गलै मन से लूजै मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा मूर्त सूरत कर या पारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल बिगास हरे सर सुबर आत्म राम सिखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना परथाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सबाया जिन सिर आ तिन तंदे लाया सच्चे ऊपर अवरना दिसै साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे खेल तमाशा तंदू कारे बाजी खेल गए बाजी गार जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिलै सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीए सहि साजी है क्यों सुख पावै दूवै तीऐ निर्मल एक निरंजन दाता गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट कही सुख पाया मंत्र मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती हर प्रभ संगी पौ ना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना जत कत देखो तेरी सरना दुख सुख देहे तू है मन पावै तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही गुरमुख जाता तू सालाही नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला आज उगादी अपर अपार है आद निरंजन खसम हमार है साचे जो जुगत विचारी साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुग तंदूकार है ताड़ी लाई सृजनहार है सच नाम सच्ची वड्याई साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख शरीरा सत सत वरत गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा मन है हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੁੱਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਬਾਂਦੇ ਆਵੈ ਬਾਂਦੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, अंदन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौतावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत न काई, हाँ मैं

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पाया सिर साहा है। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीर्ष नहा है। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चे ओ महा है। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा है। सब को बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मै।

सुन कलाय परंपर धारी आप निरालम अप्रियापारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएगा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टियो पाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएगा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश्यो पाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत तिरपमन सारे सुन्ने

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पिछाता है, पाप पुन वर्त संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पिछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पिछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मनमुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का

जा कौ मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई शेख मसाए कहा जी, सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करण करीमा, सिबत मोहब्बत अथा रहीमा, हक हुक्म सच खुदाया बुझ, नानक बंद खलास तरा। मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब उच बिराजे, आपे थापो थापे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किश भौ ना व्यापै बालका। गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, रक्त किरम में नहीं संघारिया, अपना सिमरण दे प्रतपालिया, ओह सगल कटा का मालका। चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ है गोचर देवा, जी जंत सब ता की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु प्रकारी पालका। तिसै प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गह लीने अंध कूपते, विरले के ई सालका। आदि अंत मध प्रभ सोई, आपे करता करे सोई, भ्रम पौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई कहलका। ऊतम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो रवाला, बासन मेट निबासन होई है, कलमल सगले जालका। संता की है रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखे नाली, सा सा सा राधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आलका। जै देखा तै अंतर जामी, निमखना विसराओ प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीवै तेरे दासा, बन जल पूर्ण थालका। तत्ती वाव ना ता कौ लागै, सिमरत नाम अंदन जागै, अनद बिनोद करे हस सिमरन, तिस माया संग ना तालका। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देह प्रप्रीतम, सुन बेनंती खालका।

बोलत ही बड़लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आतुम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जब आए केस ते पकड़े ते हर को नाम छावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रम नू रसपत इंद्री कया नमाना, बाबा अब ना बसो ए गाओ, करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पाग गए लै बांधे ओ जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपव होए वना हम बै, सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मै बूझे ता निरपव होए वना हम बै, हर पाखंड ना की जई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक वना हम बै, त्रिसना पासना छोड़ई बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड वना हम बै, चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े, जे मन मृतक होए वना हम बै, सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े, जे लोचे सब कोए वना हम बै, कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े, सहजे पावे सोए वना हम बै, कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े, मोको पौजल पार उतार वना हम बै, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया, खीर समानो साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना काहू की मानी, सलोक कबीर गगन दमामा बाजियो परयो निशा न काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड़े खेत, कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਉਹੁ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਾਥੈ ਸ਼ਤਰ ਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਬਤ ਕੋ ਨਾ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਇਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ਅੰਬਰੀਕੋ ਦਿਓ ਅਪੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਠਾਕਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਤ੍ਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂ ਬਲਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਤੰਦੈ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੈ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਊਠ

नदर करे सतगुरु मिलाए नानक हिरदय नाम वसाए पहरो महला तीजा नामे उदरे सब जितने लो गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए हर जियो अपनी कृपा करे गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ राम नाम जिन प्रीत प्यार आप उदरे सब को लो धारण हार बिन नावे मनमुख।

सत्संगत में लाए, नानक तिसनो देवड़ियाई जो राम नाम चित लाए रहाओ। ममता काल सब रोग व्यापे तिन जमकी है सिरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै जिन हर राख्या और तारा। जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता से जग में काहे आया, गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वट भागी सतगुर सेवा लाए, जो इच्छा सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। पहरो महला तीजा दुख विच जमै दुख मरे, दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिष्टा माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेव ना कीनी हर का नाम ना पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिले वड़ियाई जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटै ता फल पाए, सच करनी सुसार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिन किरण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिन किरण पूरे भाग पाई है, जिनी राम नाम चित लाया। पहरो महला तीजा शब्द विचारे सो जन साचा, जिन कै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती ता तन दुख न होई। भगत भगत कह सब कोई, बिन सतगुर सेवे भगत न पाई है। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवावै लाभ मांगै, लाहा लाभ किदू होई। जम काल सदा है सिरी उपर, दूजे पाए पत खोई। बहले पेख पवै दिन राती हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लूजै बाद वखाणै, मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेवै परम गत पावै, नाम मिलै वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया, दर साचै पथ पाई। पहरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै, दूजे पाए खुवाए। उदर रहसान न भरिय कबहू, तृष्णागन पचाए। सदा आनंद राम रस राते, हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पीतृ पताते रहाओ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी, सिर सिर तंदै लाए। माया मोह किया जिन आपे, आपे दूजे लाए। तिसनो केहो कहिए जे दूजा होवै, सब तुद्दै महे समाए। गुरमुख ज्ञान तत् विचारा, ज्योति ज्योत मिलाए। सो प्रभ साचा सद ही साचा, साचा सब आकारा। नानक सतगुर सोजी पाई, सच नाम निस्तारा। पहरो महला तीजा कल मैं प्रेत, जिनी राम ना पिछाता। सतजुग परमहंस बिचारी, द्वापर त्रेतै मानस वरतै, विरले हों मैं मारी। कल मैं राम नाम वडियाई, जुग जुग गुरमुख एको जाता। विणना मैं मुक्त ना पाई रहाओ। हृदय नाम लिखै जन साचा, गुरमुख मन वसाई। आप तरै सगले कुल तारै, जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगण शब्द जलाए। जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाए। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माणै। जो कुछ कहै सो भला कर मानै, नानक नाम वखाणै। पहरो महला तीजा मनसा मनै समाए।

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पुजावन हार रहाओ सब मैं एको रव रहया गुरबिन पूजना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए पहरो महला तीजा बाज गुरु जगत गौराना पूला चोटा खाई मर मर जमै सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर शांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाले राम नाम वड़ियाई पहरो महला तीजा हम मैं माया मोहे खवाया दुख हटे दुख आए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदन लागे प्यार रहाओ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमाने कूड़ होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निदान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरा नाला गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना ते बालको गम ना करे रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया हाथ खड़ग करताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर कै शब्द हमें बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई जुग जुग भगतां की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया रहाओ आंदन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया संत जना की निंदा करे दुष्ट दै चढ़ाया प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया संत जना का हर जियो राखा दैते काल नेड़ाया अपनी पैज आपे राख भगतां दे वड़ियाई नानक हर नाक्ष नखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई
राग पहराओ महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण मेरे मानो हर पज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायण सब किले विख पाप गए गावायण तू आपे करता श्रिष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मेलो गुरपूरा सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी पैरो महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली हर अगमा गोचर गुर अगम दिखाली विचकाया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली पहरो महला चौथा सब कर तेरे तू सब ना माहे तुझते बाहर कोई ना है हर सुखदाता मेरे मन जाप हाँ तुद सालाही तू मेरा हर प्रभाप रहाओ जै जै देखा तै हर प्रभ सोए सब तेरे वस दूजा अवर ना कोए जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई न जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पहरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधुसूदन जपिए और तार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर का डे मार रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या तिन कार्ज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूर तो ता किश कीजै जे किश होवे हर बाहर जो किश करे सोई पल होसी हर त्यावो अंदन नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओ पूछना किसा करे बीचार नानक सो प्रभसदा त्याई जिन मेलिया सतगुर कृपा तार पैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जप्यागत होए हमारी तिनका दर्स देख मन बिकसे खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनिहारी रहाओ तिन मत उत्तम तिन पति उत्तम जिन हृदय वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गए काडे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तिन ना काटे सृजनहारी हरे आप बोलावे आपे बोले हरे आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिले सो तुद मिलसी जन नानक आए जंत विचारी पैरो महला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जत हर जित हर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्रेव नित चरणे
जग जीवन हर त्याय तरने अनेक संख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सो कहने। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगमो नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावै, निंदक कौ अगन में पावै, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचिया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद ना पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर्ब हिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਪਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ ਮਾਨਸ ਬਾਣ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ, ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ, ਤਿਸਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪੜ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ, ਪੈਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

गुरसो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिनस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिद माहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागै नाम सुन तो जम दूरों भागै नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमर तो किस चाख ना जो है हर सिमर तो दैत देव ना पुहै हर सिमर तो मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो नुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया अकेला जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ आपे वन तरण

आपे शिव शक्ति संयोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिंदूजा नाही कोए, सागर तरिय नाम कै रंग, गुण गावे नानक साध संग, मुकत भुगत जुगत वस जा कै, ऊणा नाही किस जनता कै, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन, पहराओ महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय, कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ, तन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल, अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुतबंध नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण, जिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ, पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया, सिमरत हर नाम, सगल ब्याद मिटी त्रह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ, हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण ताम, जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम, काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभमान, ऐसे संत भेटे वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान,

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखै उदास, कह कबीर हों ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रहै राजा राना। राम राजा नौन मेरा, संपै हेत कला तो तन तेरा। रहाओ आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जाकांत नाम पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कतै न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरौ ना पाती पूजौ ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजौ सदा सदा मनावौ, ऐसी सेव दरगह सुख पावौ। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होएगा वो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना तरे। रहाओ जाओ निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जाओ सरदन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारिंग पानी। आबना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना पजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुविद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पदू

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदा एक कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे व जो पाथर की पाई पाए जिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदबो लंता सर्व जिया को प्रावधान देता रहा अंतर देव न जान अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक

आई। रहाओ पंखी मृग माया मैराते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया मैं पेला, सिद्ध चौरासी माया मैं खेला, छे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव, कह कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवार आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ, जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूल ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राए, जीतो बूढ़े हार उतरे, गुरप्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सत्तर सह सलाह रह जाके, सवा लाख पै कंबरता के, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजरस दूर मैल को पावे, रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई, उन पी पिस्तक नेरी पाई, दिल खल हल जाके जर्द रूबानी, छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हमसरा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां, रहाओ आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मान बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई, रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे, कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर, इं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे परजाली, एक चुट सजाया, सत संतोख लै लरने लागा, तोरे दोय दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा ते, पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर, राज लियो अबनासी, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर करे कबीर, मन ना डिगे तन काहे कौ डराए, चरण कमल चित रहो समाए, रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ, पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास, बिजली चमकै होय आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, एहो जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै परम भागै, रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हमै गावन गावै गीत, अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा, आगम्या गोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावे को तरनी तरमंत,
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दल अभ अंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवरना पाइये गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मै रे समाए। मन मध्ये जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। रहाओ कोट चंद्र में करे चिराक, सुरत पीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिर, बास कोट सेज बिस्थर। समुद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहर, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सोहै बत्ती सलखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए ना मैं दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूंपे आर ना पावै। पंत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुर मिले ते पार उतार है। हस्त खेलत तेरे

लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछै बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो कर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़ कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सही सुभाए पयो बैरागी रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नारो तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु ना टूट सो रया समाए, नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हर सेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो का लै तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़िया मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो करमा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बिचार, इनबित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी। पूत प्रहलाद कया नहीं मानै, तिन तौ औरै ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, करसै औद कनेरी। गिरताल जल ज्वाला पै राखियो, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कोप्यो, मोहे बताओ जो तुहे राखै। पीत पितांबर त्रि पवन तनी, थंब माहे हर पाखै। हर नाकसो जिन नखै बिदारियो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देव हम नर हर त्यावै, राम अपै पददाता। सुल्तान पूछै सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कमा। नामा सुल्तान ने बांधला, देखो तेरा हर बीठला। रहाओ बिस्मिल गौ देहो जी आए, नातर गर्दन मारो उठाए। बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मिल किया ना जीवै कोए। मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। बादशाह हो चढ़े अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे ना मैं की माए, छोड़ राम की ना पजै खुदाए। ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। पिंड पड़े तो हर गुण गाए, करे गजेंद सुंड की चोट। ना माय उबरे हर की ओट, काजी मुल्ला करे सलाम। इन हिंदू मेरा मलिया मान, बादशाह बेनती सुने हो। नामे सर पर सोना ले हो, माल ले हो तो दोजक परो। तीन छोड़ दुनिया को परो, पावो बेड़ी हाथों तालो। नामा गावे गुण गोपाल, गंग जमन जो उल्टी बह। तो नामा हर करता रह, सात कड़ी जा बीती सुनी। अजो ना आयो त्रिपवन तनी, पाखंतन बाज बजाएला। गर चढ़े गोविंद आएला, अपने भगत पर की प्रतपाल। गरड़ चढ़े आए गोपाल, कह ता तरन एक ओडी करो। कह ता लेकर ऊपर तरो, कहता मुई गऊ देव जी आए। सब कोई देखे पति आए, नामा प्रणवै सेल मसेल। गऊ दुहाई बछरा मेल, दूधै दोहे जब मटकी भरी। ले बादशाह के आगे तरी,
ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਔਕਟ ਕੀ ਕਟ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਬਿਨਤੀ ਫਰਮਾਏ, ਬਖਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਏ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹੋ ਕਿਛ ਪਤੀਆ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਸਾਚ ਸੀਲ ਚੱਲ ਸੁਲਤਾਨ। ਨਾਮ ਦੇਓ ਸਭ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਾਓ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਏ। ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾਲੇ ਉਧਰਿਆ ਪਾਰ। ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਮੁਰਾਰ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ ਝੂਠ ਅਣ ਸਭ ਸੇਵ ਰਹਾਓ। ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੈ, ਜਉ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਦੈ ਦਿਸਤਾਵੈ।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जपतो कछ नहीं संताप, गोविंद जपतो समट अंधेर, हर सिमरतो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगतहीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निगट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, साख फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नव निध एहे, कर्म प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध धूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ।